राम नाम प्रकाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव, हर जन के वड भाग बडेरे, बिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपास, मिल संगत गुण प्रकाश, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, हे भागहीन जमपास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, थिरक जीवे थिरक जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन धुरमस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंगत जित रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम, जां आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मैं जन तू पाए, ता कार्य कागे कर तरिया, मेरे मां दो जी सतसंगत मिले सु तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुखे का शरिया राव, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर जग समाए ठाकुर, काहे मन पो करिया, ऊडे ऊड़ आवे सह को सा, सिर पाछे बचरे छरिया, तिन कौन खलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करिया, सब निधान दस अषिधान, ठाकुर कर तर धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा भरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख कौम का सतगुरु प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम पारा, सब त्यावे सब त्यावे तुझी, हर सच्चे सिर जनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जी आका दा तारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा, रापे ठाकुर रापे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सरब निरंतर जी, हर एको ब्रुख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद विने और न जाना, तू पार ब्रह्म बेंत बेंत जी, तेरे क्या गुण आक वखाणा, जो सेवा है तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाणा, हर त्यावे तुझी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, जिन तुटी जमकी फासी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी, तिन का भो सुखवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सालाहन तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक रहर पूजा जी, तब तापै जपै बेंता, तेरे अनेक पढ़ै भो सिमरन शास्त्र जी, कर क्रिया काट कर्म करंता, से भगत परे जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरम प्रकर्ता जी, तुझ जेवड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुझे आपे भावे सोई वर्त है जी, तुम आपे करह सोई, तुझे आपे सिर सो पाई जी, तुझे आपे सिर सोगोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानो आसा महला चौथा, तू करता सत्यार मैंडा साई, जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई राव, सब तेरी तू सब नहीं त्याया, जिसनो कृपा करे तिन्ना मृतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख को आया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तू जी माए, तू जिंदू जा कोई नाए, जी जन सब तेरा खेल, मिजोग मिछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सदी ही आख वखाण है, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजी हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा क्या सब होए, तुद बिंदु जाय और न कोए, तू कर विखे जाने सोए, जन नानक गुरु प्रगट होए, आसा महला पहला,
ਤਿਤ ਸਰਵਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੇ ਚੱਲ ਅਹਿਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਡੂਬੇ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚਿਤ ਗੁਣ ਮਨਾਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਰਿਆ ਰਾਹੋ ਨਾ ਹੋ ਜਥੀ ਸਤੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿੰਤੂ ਨਾ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਢਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੁਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਣਕੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਰਿਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨਿਸਾਦ ਸੰਗਤ ਮੁਸਕੀਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਬੋਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ ਧਰਮਿਰਤਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਾਮ ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ।

रेखी राखो शर्मा पात साहे दसवीं कभी उपाग बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट वह तुम कहो आप आद मोहे बचाओ सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा नहीं कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह।

कहूं बैठा कहूं सिमर पर शंकर कैठा सगरी शिष दिखाए चंबो आज हुआ स्वरूप शंभो अब रक्षा मेरी तुम करो सिखुबार सिख संघरो दुष्ट जीते उठो तुत पाता शकल मलेच करो रण गाथा जे अज तब शरण पारे तिनके दुष्ट कथा मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट चपटारे जो कल को एक बार दिया है ताके काल निकट न आए है रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट तत्काला कृपा दिखन जाए हरियो ताके ताप तनक मोहरियो रिद सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट सहा छड़ सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुमहारा काल पाछते ताए उबारा जिन नर नाम त्यारो का दर्द दुष्ट दुख देरा खड़के तुम्हें शरण त्यारी आपा दे उबारी सरब ठौर मोह साई दुष्ट दोख ते ले बचाई।

करे तेरा कार सब सवारना सब ना गला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साथ।

हर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तूरे मुंदावणी महला पंजवां।

पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ने कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समागिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो वे सो आगे हका

चक्र चिहिन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनपहु प्रकाश

गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु ने सतारे डंडौत बंदन अनेक बार

मन मूरख मिल सजाए, जिन कीते तसैना सीवणी, देदार जुक समाए, जम का फाहा गलो न कटिया, फिर आवह जाए, जिनका पूरब लिखिया, सतगुर मिलया तिन आई।

गुरु सवारी संगत जी बहुत ही प्यार सहित जुड़ बैठे हो, आओ रसना पवित्र करो जी, मिल जुल करके सतगुरु जी दी बख्शी हुई गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। रसना द्वारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार राजान राज पहानहान पहान दीवान देव उपमा महान पूरे सतगुरु जगत गुरु वालिये कुल आलम जुग हो जुग अटल सचे पातशाह आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र ही माई पहाई गुरसिख बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो कर्मां वाले हो नेता प्रति सतगुरां दे पावन दरबार दी हाजरी भरके सतगुरु जी दी अमृत बाणी सरवण करके जी बख्शे होए जिंदगी दे सवासां पलां नूं गुरसंगत जी सफल बनाउण दा सफल जतन कर दे ओ। जिवें जिवें दी भावना द्वारे आप जी गुरुद्वारा साहिब आउंदे हो ध्यान दिओ जिवें जिवें दी भावना दे नाल गुरु दा प्यारा गुरसिख सतगुरां दी हजूरी अंदर आउंदा है तेवें तेवें दी सतगुरु जी दी बख्शिश प्राप्त हुंदी है। श्री मान भाई गुरुदास साहब जी ने एक कवित बड़ा प्यारा कलम बंद किया है। वो कहिंदे जैसे तो अनेक रोगी आवत है बैद गृह जैसो जैसो रोग तैसो औख दिखवावे। जिवें कोई वैद है डॉक्टर है दवाई दारू करता है गुरु सवारी संगत जी उहदे कोल अनेक ही रोगी जांदे ने पर ये बात तो नहीं होंदी कि रोग कुछ होर होवे तां दवाई कुछ होर होवे। जिवें जिवें दा रोग हुंदा तिवें तिवें दा सियाणा डॉक्टर जिहड़ा उहनूं दवाई दिंदा है। जैसे तौ अनेक रोगी आवत है बैद गृह जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। औखद नाम है दवाई। जैसे राज द्वार लोग आवत सेवा निमित जो ही जाही जोग तैसी टैल बतावई। जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवा जोई जोई जाचा दे दे दुखन मिटावई। चौथा बोल कहिंदे ने तैसे गुर शरण आवत है अनेक सिख। सवेर तो लैके शाम तक अनेक ही सिख आउंदे ने जैसो जैसो भाओ तैसी कामना पजावी। जिवें जिवें दे प्रेम भावना विच गुरु दा सिख आ रहा है तेवें तेवें सतगुरु जी अपार अपार कृपा करदे ने। तुसी भावना वाले नेमी प्रेमी गुरसिख भाई भाई गुरसिख दूर दरेडे घरां विच भी अमृत बाणी दा आनंद प्राप्त करदे ने। यही गुरु की अपार कृपा है। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बेदारियो कृपा दृष्ट तन जाही नि हरि हो ताके ताप तनक मैं हरि हो। तनक जिन्हां उत्ते सतगुरु जी दी छिन मात्र कृपा निगाह पै जांदी है सतगुरु जी मेहर भरी नजर नाल वेख लैंदे ने कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप
ਤਨਕ ਮੈਂ ਹਰੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿਅਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। हे मेरे सुंदर स्वरूप प्यारे जी, जैसी बख्शिश आप जी कर दे हो, एहो जी बख्शिश कदे किधरों प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे जा की शोत जगत को लागे, तां पर तुही ढरे, नीच है ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तर, कह रविदास सुनोरे संतो, हर जियो ते सब सर। वड्डियां भागां वाले लड़ीवार गुरु शब्द नाल गुरु संगत जी रोजाना सांझ बनती है। सारंग दी वराग प्रारंभ है। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1249 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

विधि की मैला कलाय को ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कृता के कृत्य का है विचार तित प्रगा सुविला सुरो से जनहार तुम गाओ मेरे निरको का सुविला हो अर्जित सुरे सदा सुख हो राहो नित नित जेड़े समालियन देखवा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवे तिरदा ते कौन सुमार संबत साह लिख्या मिल कृपा तेल देह सुजन शिव श्री आजो हो वै साहब सु मेल कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन सदन हरा सिमरिए नानक से दे अनुराग सामेला पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरु एको वेस अनेक बाबा जय कर करते किरत हो सो ग्राह खुड़ाए तो राहो विश्वे चसिया कड़िया पैरा थी वारी माहुआ सूरज एको रुता नेक नान करते के तेवेश

भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत काश बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दीन जागै, प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नाउ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक पा कै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा, प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताजी, प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजी, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरनते लागे जिन आप दयाला, नानक जान की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बस है हर नेरे, संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद झूनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरह से जान जिन को प्रभ माया, नानक तिन जान सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपति जह मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जय महापयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै, जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हर, गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जापत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर, अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जेहे मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनेक बिघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनेक जोन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम, हाउ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जप हाउ मन रंग, नानक पाइये साध कै संग, जेहे मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जिह पैंडाय महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को ना सियानु, हर का नाम तह नाल पशानु, जह महा पयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जह त्रिखा मन तुज अकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट।
हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै, हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे ना भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन सोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपाए, हर का भगत प्रगट नहीं छपाए, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात ए हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसाए, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश अवर ना होए, नानक गुर मुख नाम पावे, जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्ये फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमै बहु रतना, शरीर कटाए होमै कार राती, वरत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खांड प्रथमी फिरै चैर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अग्न माहे होमत परान, कनक अशव है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, ताओ भी होमै मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखया टरे, जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर की नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच, बहुत सियाणप जम का भाव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै, छूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमै शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस काओ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपुने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर धन कौ धन तेरो नाउ, निथावे कौ नाउ तेरा थाउ, निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ देवो दान, करण करावण हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपने गात में तो जानो हो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया ते सचीत रख, नानक निभ ही नाल अष्टपति,
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਰ ਬਿਸਥਾ ਤੁਜਹਿ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸ ਹੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾਤੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਧ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕਉਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰ ਤਹਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਸ਼ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਊੜ ਨਿਭਾਵੈ ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੂੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੂਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਚੀਤ ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਆਨੰਦ ਕੀਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗ ਹੈ ਅਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਏਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਨਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਾਸ਼ ਬਹੁਰ ਸਾਹੁਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸਦੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲਨ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਹ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ਤਾ ਕਉ ਹਾਸ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਏ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਬਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ
मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साधकी शरण, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै है, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै है, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देह, नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरारथ दाम, तन तन ते जन जिहे घट बस्यो हर नाउ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू पीन, अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन मै मरै, जिसका अंतर बस निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक ऊन जान चरण पराता, करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपह मानै, आपह आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब काश जानै आत्म की रहत, जिस पावै तिस लै लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जाप नानक हरी सलोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परमगत पावै, जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना, जिह प्रसाद रंग रास भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभाव है, जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय, जिह प्रसाद तुज सब को मानै, मुख ताकू जस रसन बखानै, जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पात सेती घर जावै, जिह प्रसाद अरोग कंचन देही, लिवलावो तिस राम स्नेही, जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत, जिह प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै, मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे, जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे, जिह प्रसाद अपूखन पहरी जय, मन ते ससिमरत क्यों आलस की जय, जिह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन ते स प्रभ कौ कबहु ना बिसारी, जिह प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए, प्रभ अपने मना जिन तेरी, मन बनत बनाई, उठत बैठत साधत सह त्याई, तिसे त्याए जो एक अलख है, ईहा ऊहा नानक तेरी रख है, जिह प्रसाद कर है पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी, जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहौ सदा अनूप, जिह प्रसाद तेरी नेकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जिह प्रसाद तेरी पात्र है, गुरु प्रसाद नानक जसका है, जिह प्रसाद सुनै करण नाद, जिह प्रसाद पेखै बिसमाद, जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चलै है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परमगत पावा है, जिह प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो, गुरु प्रसाद नानक मन जागहो,
जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल ना मनहु बिसार। जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ता कौ जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे ते सह जान मन सदा हजूरे। जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सिउ राच। जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो पशु न किन्हू लया। जित जित लावहो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मेता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कह संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत। साध कह संग मिटे अभिमान साध कह संग प्रगटे सुज्ञान। साध कह संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निवेरा। साध कह संग पाए नाम रतन साध कह संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कह संग अगोचर मिलै साध कह संग सदा पर फुलै। साध कह संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कह संग मनोहर बैन। साध कह संग न कतहू तावै साध संग अस्थित मन पावै। साध कह संग माया ते भिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कह संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर साध कह संग न बीगा पैर। साध कह संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कह संग नाही हो ताप साध कह संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध कह संग न कब हुता वै साध कह संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लहै साधु कह संग अजर सहै। साध कह संग बसै थान ऊचै साधु कह संग महल पहुँचै। साध कह संग दृढ़ सब धर्म साध कह संग केवल पार ब्रह्म। साध कह संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुरबान। साध कह संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निसतारै। साधु कह संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कह संग शोभा सुर देवा। साधु कह संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कह संग सर्वथान गम नानक साध कह संग सफल जनम। साध कह संग नहीं काशुकाल दर्शन भेटत हो तिन हाल। साध कह संग कलूखत हरै साध कह संग नरक पर हरै। साध कह संग इहां उहां सुहेला साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै साध कह संग न बिरसा जावै। पार ब्रह्म साध रित बसै नानक उधरै साध सुन रसै। साध कह संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ। साध कह संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै। साध कह संग लगै प्रभ मीठा साधु कह संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी। साध कह संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद ना जानै जेता सुन है तेता बख्याना है। साध की उपमा ते हो गुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर। साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सबिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन आपो न है सब ते नीचा।
ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा दशम दर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी कहो खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दे आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक। उरत हरै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निस्तारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्स। पर त्रय रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै। इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिशन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिन सह सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै। राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मै जानै असथूल। चहवर ना कहो दे उपदेश नानक उस पंडित कहो सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया
दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं बेयोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ आपे करण करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए आनत तरंग लखी न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बान प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म त्यंतार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते का अंत न पावै कई कोट पहे अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया शर्म माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजी रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरी मीर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्य के नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरै सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरै कई कोट बहुजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब केश प्रभ कै हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संग तिन लेव लागी कई कोट प्रभ कौ खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मंगै सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो बिस्थार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एको एक ओंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताकांत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारै एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पै साध साध ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन कौ सासा सुमारी नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहारण है जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावण करणै जोग जो तिस भावै सोई होग खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारावारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ भावै मनुख गत पावै प्रभ भावै तां पाथर तरावै प्रभ भावै बिन सास्ते राखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै प्रभ भावै तां पतत उधारै आप करै
आपन बिचार है दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरनावै कहो मानुक ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दै दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिसे अपने भगत दे नानक ते जान नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु ना आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा कौ अपने करै बख्सीस ताका लेखा ना गनै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू नींद चिंद ब्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावण हार कबहू निरत करे बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बहे बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मैं आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक ज्योन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै ज्यो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोय कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बहुर ना आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते इक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मै जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसराम नानक प्रभ कह सतगुरु बान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जोवन वंत सो होवत बिष्टाका जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कार गरबावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए बिनास सब ते आप जाने बलवंत खिनमै होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे सरम पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह कहो कैसे गावै आपस कहो जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने

नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबहू कै संग बूझै देखै कर बबेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन सह आवे न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब काश उसका ओ करने हार उस ते भिन्न कहो किश होए थान थनंतर एक सोए आपो ने चाले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संतो काय दुखन आरजा कटाय संतो काय दुखन जमते नहीं छुटाय संत कह दुखन सुख सब जाए संत कह दुखन नरक मैं पाए संत कह दुखन मत होए मलीन संत कह दुखन शोभा तहीन संत के हते कौ रखे न कोए संत कह दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत कह दुखन ते मुख भवै संतन कह दुखन काग ज्यों लवै संतन कह दुखन सर्प ज्यों पाए संत कह दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए संतन कह दुखन कृष्णा मैं जलै संत कह दुखन सब को शलै संत कह दुखन तेज सब जाए संत कह दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत भावै ता ओए पिही गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खेन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी कौ डान लागै संत के दुखी कौ सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी कौ नाही ठाओ नानक संत भावै तन लय मिलाए संत का दुखी अध बीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुचै संत के दुखी को उद्यान प्रमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी कौ अवर न रखन हार नानक संत भावै तां लए उबार संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी साध मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पाया नानक ज्योतिष भावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न त्रष्टै कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पया तिरत न मेटै कोई नानक जानै सच्चा सोए सब घट तिसक्यो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास विरास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे बड़भागी नानक जान से सलोक तज हो सियानप सुरजन हो सिमरहो हर हर राय।

अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरहो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरह, हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन किरपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत हो तो उधार, आप तर लोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहो तिने धान, सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊंच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम सांत रिद नावनिद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बिता, समदारसी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए।

न माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ताकी सोबा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी।

सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई।

नावे वड़ुचाऊ वै कोई ति सूचे कौ जाने सोए जीवड़ा आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जोद अपार कित्या गणत नहीं विचार किते खप टह वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरखा ही काहे किते आदू भूख सदमार ए पैदा तेरी दातार बंद खलासी भाणे हुए हो राख न सकै कोए जे को खाए कि आखन पाए ओ जाने जितिया मुह खाए आपे जाने आपे दे आ कैसे पेके के जिसन बख्शे शिव साला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आव है मुल लै जाहे अमुल पाए अमुला सुमाहे अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो मुल आख्या न जाए आखा करहे लिवलाए आ कह वेद पाठ पुराण आ कह पढ़े करह वक

पिता के रूप न कथने जाहे। नाउ हे मरे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोक रह, आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तंत नंत। तिथै लो लो आकार, जिव जे हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरे सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। पाओ खला गंत पताऊ, भांडा पाओ अमृत तटाल। घड़ियै शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दुए दाई दाया, खेल सगल जगत। चंगे

तत्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रया छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अकामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुविक नमस्तंग अनिक नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अतापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्ये नमस्तस्त रम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त जब्बे अदिशंग अदिशे नमस्तंग अपिशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देव नमस्तंग पेव नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्त दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग किरतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत्तबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंत्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजे है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है भुजंग प्रया छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति बेपूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवेशु धर्मे
नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसांग नमो कूप कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग इसनानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद कर्ता दो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदीय पेदीय नामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर्चा चरी चांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपीजे समस्तं प्रसीजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल कर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग

शांतरूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांतरूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेक अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाते अजो नियमो निनरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग परनासी करिमूल कनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय विगुनी में हरियंग करियंग करिमूल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्वजुगते।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे।

बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे। इको ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जियो डरत है आपना कैस्यो करी पुकार, दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब दातार जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। अमृत वेले दे दीवान सजे आप समूह संगतां ने हाजरियां भर के सतगुरु जी के पावन पवित्र दर घर दियां खुशियां प्राप्त कीतियां हन। गुरदेव जी कृपा करन सबना दी हाजरी दर प्रवान करन, दरों करों चढ़दियां कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन पावन दीवाना दी संपूर्णता ते अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक सतगुरु जी ने बख्शिश कीते हन। जो तनासरी राग अंदर गुरदेव

गुरु गृहनिवास अंतर जमी तंत्र सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी जो हाजर हजो आप जी बाणी दे सत्कार जो बेअंत गुरसिख माई पयो आप जी बाणी दे सत्कार जो बेअंत माया पेटा प्रदे अर्जन सरण सिखी दान प्रोसा दान चन्ना कमला प्यार बख्शना खजाने पर पुरख ने सो आओ गुरु प्यारे साथ समझो कीर्तन की इनिक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका दिखीमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरण करिए कथा दे सत्कारियो ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले उन्हों पासो अज दे श्री मुखाक दी विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरण करिए दास लोपति प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं आशा रखी चित मह, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतनाम वाहिगुरु जी। तनासरी महला पहला।

तोड़ जाहि बाहु चित लायु, सो संचयु जित भूख तिसायु, अमृत नाम तोसा नहीं पायु, काम क्रोध मोह

हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके ग्रह में आया।

लेख लिखियो तुर माथै एह बिद नानक हर लैन एह बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवां।

कहाउ। कणु कणु कणु सद लूड़ै, बिन लहने कैठे पायू रे। महाराज रोगाथ वाहु स्यों लुबड़ेओ, निभागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन, सगलो थारे सगलो।

दूर, तंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग इस जी के,

शांत सहज सुख मन उपजियो, कोट सूर नानक परगास, टोटी महला पंजवां, हर हर पतित पावन, जी प्राण मान सुखदाता, अंतर जामी मन को पावन रहाउ, सुंदर सुगढ़ चतुर सब बेता, हृदास निवास भगत गुण गावन, निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूम बीजन सोखावन, बिस्मन बिस्म भये बिस्मादा, आन न बियो दूसर लावन, रसना सिमर सिमर।

गोबिंद भजन बिन हड़का जल रहाओ। छोड़ सियानप बहु चतुराई, दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानु।

प्रेम भगत राची जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवां माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेसर कोट फल।

कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख न सह, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूरन भई आसा, दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महल्ला पंजवां, हर हर चरण हृदय उर तारे। सिमर स्वामी।

सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्मे अपने कीने तिनका बाहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे सोरठ महला नौवा इको अंकार सतगुर प्रसाद कहूं कहा अपनी अदमाई पुरज्यो कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कौ साच जान कै तास्यो रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो नहीं कब हूं होत जो संग सहाई मग्न रहो माया मैं निस दिन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनतगत बिन हर की शरणाई टोडी

जल की माछली चरै खजूर, काय रे बक बाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छुपायो रहाओ। पंडित हुए कै वेद बखाने, मूर्ख नाम देवरा मह जाने, कौन को कलंक रहो, राम नाम लेत ही पतित पवित पहे, राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रह काहे कौ तीर्थ जाई। भणत नाम देव सुकृत सुमत पहे,

नानक कृपा करी हर जिन कौ के संत भले हर राम। बैराड़ी महल्ला चौथा। मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रतन रतन हर नीको, गुरु सतगुरु दान दिवायो। रहाओ तिस जन को।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खुवे, हर भव जल पार उतारा। रहाओ काया नगर वस्त हर स्वामी, हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट वस्त कछ नदर न आवे, हर लाध

करना के पट भांडा कह न कोए ऐसा वर्ण भगत मह होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिन दर भीखे आ पाए तिलंग महला पहला घर तीजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाहे आ प्यारे।

ऐसा परमल लाइया। एव कहे सुहागणी भैने इन बाती सोह पाइय, आप गवाइय ता सोह पाइय, और कैसी चतुराई, सहु नदर कर देखे सो दिन लिखे, कामण नौ निद पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागण, नानक सा सब राई, ऐसे रंग राती सहज की माती, एहनि सुपाए समाणी, सुंदर साए स्वरूप बिचखण, कही ऐसा सियाणी। तिलंग महल्ला पहला।

सच सुनाए सी सच की बेला। तिलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब आए हुक्म खसमाहू हुक्म सब वर्तनी। सच साहिब साचा खेल सब हर तनी। साल आयो सच सब उप

रहे हमरा पद पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयो गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो प्यार सहित गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के नितां प्रति सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी भला करन, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित दुआरै उबर तितै लहो वार, दिमावक अनुसार जगत जलंदे दे भले वास्ते जो पावन पवित्र श्री सहज पाठ चल रहे हैं, आप जी नितां प्रति हाजरियां भर के खुशियां प्राप्त कर दिओ। सतगुरु जी रहमत करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां नूं प्रदान करन। गुरु कृपा करे पढ़िया सुनिया गाव्या सतगुरु जी थाए पाउन। अगाध बोध बाणी पढ़दिआं बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने भुल्लां ना चितारदे फतेह गजा।